मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत किंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अना

0: ईस्ट एफएम
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं

तो जशन पजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी शिव को।

की एक एक की पीर पछान है, घट घट के पट पट की जान है, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत देह अपारा, जब आ करख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं, जेते

प्राचीन तन पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो चेती तुमरा लखाना जाय पसारा केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही भूपा अंडज जे रज सेतज कीनी।

चलिए सामिन अब देखते हैं कि शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका कहती है 1986 में कोका कोला बिल्ट अ मैसिव लोगो अपनी कंपनी का नाम जो है वो लिखा इन चिलीज अटाकामा डेजर्ट यूजिंग 70,000 एम्प्टी बॉटल्स कोका कोला ने जो खाली बोतलें थी 70,000 बोतलें ली और लिखा अपनी कंपनी का नाम It's still visible from space 40 years later. Shamim from South Africa. Thank you. Or jo baki ke hain yahan. Second kisne Munir from South Munir from I think Kisumu. Jab log tumhe tod dein to apne tukde lekar rab ke paas chale jao. Wo tumhe jod dega. Kya baat hai. Wah. कहते जब लोग तुम्हें तोड़ दें मुनीर ने भेजा है तो ऐसा करो अपने टुकड़े इकट्ठे करो लेकर अपने रब के पास चले जाओ अपने भगवान के पास चले जाओ वो जोड़ देगा क्या बात है व्हाट अ गुड वन रूपल रूपल कहती हैं हैव अ हैप्पी फ्राइडे डेज एंड वीक्स ऑफ फ्लाइंग सो इट इज द सो इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग गॉड नोज वे वी आर हेडेड वन लाइन सज्जन रे झूठ मत बोलना लेकिन जो आपने कहा इसमें कोई झूठ नहीं है हालांकि हुक्मरान आपको कहेंगे कोई महंगाई नहीं है सब ठीक ठाक है लेकिन है आपने कहा ना कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी बढ़ रही है रूपल ठीक है सज्जन रे झूठ मत बोल ओके हाय परवीन जी केम छो गुड मॉर्निंग और जुमा मुबारक टू यू एंड ऑल द लिसनर्स हैव अ वंडरफुल डे गॉड ब्लेस यू और ये हैं कौन मिस कोकिला मिसेज ही होंगी ऑफ कोर्स मिस कोकिला फ्रॉम यूके सना आपने जुमा मुबारक हर एक को विश कर दिया है चंद्रिका वासंत को साइड ट्यून देन यासर समझो यासर ने भेजा है ना इंडोनेशिया का वो मैं रखती हूँ रोके पहले हम ये गाना सुनते हैं

0: और यासर ने कहा है कि आपने बात करनी थी खबर देनी थी इंडोनेशिया की हियर आर सम फैक्ट्स अबाउट इंडोनेशिया सो मैंने इंडोनेशिया के बारे में इससे पहले कि मैं खबर दूं ये फैक्ट्स बहुत दिलचस्प हैं ये हकायक जो हैं इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्किपेलागो समन आर्किपेलागो होता है पूरे कितने ज्यादा जजीरे आइलैंड्स इकट्ठे हो जाएं इकट्ठे हों कुदरती तौर पर और उसको आर्किपेलागो कहते हैं तो कहते हैं कि ये जो इंडोनेशिया है इसमें 17,000 आइलैंड्स हैं 17,000 उफ और कहते हैं द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में है सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की इंडोनेशिया में है हालांकि ये सेक्युलर स्टेट है रिलीजियस नहीं है इस्लामिक स्टेट नहीं है ये सेक्युलर है इसमें हिंदू रहते हैं बुद्धिस्ट रहते हैं और क्रिश्चियन सब इकट्ठे हैं लेकिन मुसलमानों की आबादी अगर किसी मुल्क में सबसे ज़्यादा है तो वो इंडोनेशिया है बहुत वाइल्ड लाइफ इनकी जो जंगली जानवर बहुत ही यूनिक हैं द कमोडो ड्रैगन्स ये माने जाते हैं लोग इनको पहचानते हैं एज एन इंडोनेशियन वाइल्ड लाइफ ओके द लार्जेस्ट फ्लावर भी यहाँ पर सबसे बड़ा दुनिया का जो फूल है रेफ्लीजिया ये यहाँ है कॉफ़ी होम टू कॉफी लुआक One of the most expensive coffees in the world. अच्छा इंडोनेशिया की है ये तो मेरे लिए बिल्कुल नया था फैक्ट फिर हुआ क्या है यहाँ पर वो भी मैं आपको बता दूंगी लेकिन पहले
1: Bangla Bollywood hits and ballads to sing along with.
2: East FM.
1: Kenya's premier
2: Asian mix. It's 10:18.
1: The bat.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
4: That rumbles all the earth continues as 10 world giants of crickets face each other to see who will rule. It's the IPL 2026, and this year it's legendary as all grueling matches are full of thrills and nail-biting excitement.
5: Get ready to cheer on your team as we here at East FM with Duracoat keep you updated on every moment. IPL 2026 is on. Catch all updates on East FM with Duracoat. Ask the experts.
6: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
7: Our client is looking for a retail market manager who can take floor operations to the next level. 4+ years in retail or hospitality management is required. Food or market experience is a major plus. Visit myjobsinkenya.com to apply.
6: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
1: More of Kenya's premier Asian mix, East FM.

और ये जो आप गाना सुना रही हैं ना, इस फिल्म की जो थी एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस, शी इज 59 टुडे, कौन है? मंजुला गुरसिया ने आपसे पूछा है। ये वाह वाह राम जी जो मैंने आपको गाना सुनाया, कहती हैं इसकी जो हीरोइन है शी इज 59 टुडे, 59 साल की हो गई हैं, तोबा आधी उम्र की लगती हैं। कौन है जवाब दीजिएगा आप उनको, और हम चलते हैं समय, वो इंडोनेशिया का जो आपको बताया है ना, अब खबर ये थी कि 2 मई को इंडोनेशिया के एक स्कूल पे गांव वालों ने धावा बोल दिया, आ गए और चिल्लाते हुए नारे लगाते हुए लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल हो गए। कौन थे ये सामिन? भीड़ दाखिल हुई है, स्कूल का जो केयर टेकर सामिन, उसके बारे में खबर फैली कि इसने लड़कियों को जो जहां वो करता धरता है सामिन, वहां लड़कियों का बलात्कार कर रहा था। ये स्कूल के केयर टेकर की गिरफ्तारी की मांग की लोग जो तैश में आए हुए थे। समझ, जिस भी बोर्डिंग स्कूल में लड़कियां होंगी ना, आम तौर पे वो निशाने पे रहता है स्कूल, लड़कियों के साथ वो जिनसी ज्यादती करता रहा। उम्र क्या है? 58 साल, 58, और हो सकता है आपसे करीब, अपने से करीब 50 साल कम उम्र की लड़कियों की इज्जत लूट रहा था। इसका नाम है आशारी कियाई। लड़कियां बेचारी गरीब परिवारों की थीं, यतीम थीं, कुछ ऑफन्स थीं। 50 से ज्यादा लड़कियों की इज्जत लूटी इसकी रिपोर्ट है, और कितने ज्यादा वो भी होंगे जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं की इस दरिंदे की। मगर समिन, बरसों कोई गिरफ्तार ना हो, ये बड़े अफसोस की बात है कि बरसों ये काम चलता रहे और फिर आप आके पुलिस हरकत में आए, कोई एक रिपोर्ट हो या दो, लेकिन क्यों कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंस्पेक्टर्स क्यों नहीं रेगुलर चेक करते ऐसी जगहों को जहां सिर्फ लड़कियां हों। खैर, इंडोनेशिया को इस वाक़े ने हिला कर रख दिया है और अवाम बहुत गुस्से में है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता कार्रवाई करेगी सरकार।

0: सो अश्विन दोषी कौन कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की कि झूठ मत बोलें?
1: ऐसा तो नहीं हो सकता, पर
0: नहीं हो सकता, बिल्कुल
1: नहीं।
0: अगर इंसान तो बना है तो झूठ बोलेगा।
1: बोलेगा यू कांट हेल्प इट।
0: या
1: कभी बोलना पड़ता है।
0: बिल्कुल। अच्छा,
1: ये थी फिल्म परवीन जी तीसरी कसम। स्क्रीन पे राज कपूर गा रहे हैं।
0: अच्छा।
1: और साथ में थी वाहिदा रहमान।
0: ओ, तीसरी कसम।
1: कसम, या परवीन जी, ये फिल्म वाज मेड बाय शायर शैलेंद्र।
0: अच्छा।
1: उनके यस, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी ए वेरी ट्रेजिक स्टोरी परवीन जी, क्योंकि क्या किया गया कि यू नो इट टुक वेरी लॉन्ग टू फिनिश इट बिकॉज एवरीबडी प्रॉमिस दैट दे विल डू पार्टिसिपेट फ्री एंड नॉट चार्ज और एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड एवरीबडी यू नो बिकॉज शैलेंद्र वॉज इन्वॉल्व विद राज कपूर। लेकिन बहुत देर हो गई, फिर फिल्म didn't do well and that was the cause of death of Shailendra. He lost mental and physical health.
0: Oh my god, you see yes. Ashwin, when you try yeah. to do something in a small budget ye hoga.
1: Yes.
0: लोग भी फिर मदद करने को माली मदद नहीं देते ना, उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिया होगा,
1: फिर यू नो कॉस्ट के वो आएगा नहीं आएगा, उनके टाइम पर आएगा, शूटिंग का टाइम निकल जाता है और सभी खर्चा हो जाता है, ये सब हुआ परवीन जी, सभी ने किया, लेकिन यू नो शैलेंद्र वाज ए रियली प्रीमैच्योरली डाइड।
0: कितने अच्छे पोएट थे, कितने
1: शायर थे, यस यस यस यस, लेकिन ये
0: वो डाइड देन। या ऑफ कोर्स इट वुड मेक हिम फील ओके ओके अश्विन।
1: या दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ
0: तीसरी कसम।
1: तीसरी कसम, या
0: ओके, थैंक यू अश्विन। समय कितने कितनी ट्रेजेडीज हुई हैं, फिर जाके हमें इतनी कहानियां मिली, फिल्में मिली, संगीत मिला। और अमीर अली राणा ने बहुत ही अच्छे अशार भेजे हैं, कहते हैं, मैं अकेला खुश हूँ, मुझे दर्द बटाना नहीं आता, छोड़ दो ये इश्क की बातें, मुझे इश्क जताना नहीं आता, कहते हो कि मेरी मुस्कान बड़ी प्यारी लगती है, इतना रुला कर गए हैं कि अब मुझे मुस्कुराना नहीं आता। कहने लगे आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, इतना रुला कर गए हैं। क्या बात है अमीर अली राणा, दैट वाज गुड। और भरत गंगाराम लंदन में हैं, कहते हैं कि मिलावट का जमाना है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सब मिलावट की मैंने बात भी आपसे पूछनी है थोड़ी देर में। भरत थैंक यू, गुड। और यहाँ पर हैं मंजुला गोरसिया, उन्होंने पूछा था कि कौन इज 59 टुडे, और मंजुला कहती है व्हाट अ स्टार्ट विद थोड़ी सी बेवफाई। जी, हमने थोड़ी सी बेवफाई का गाना भी सुनाया था आपको। फ्राइडे की जुमा मुबारक फ्रॉम प्यारली भाटिया। और यासर ने सही जवाब भी दिया है, आपको जुमा मुबारक भी कहा है। दिनेश और शोभना, गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर। जॉय इजंट फाउंड इन थिंग्स, इट फाउंड इन द वे यू चूज टू एक्सपीरियंस लाइफ। Find happiness in little moments and you will always have enough. Chote chote lamhat mein khushi dhoondo. Okay, Manju Dagar. Hi, good morning. Ye gaane sunkar hum sari, ye gaana hum sari duniya bhool jate hain. Khud ko kar buland itna ke Renu ka shaan. Acha, khud ko kar buland itna ke khuda bande se khud puche teri kya? तेरी मर्जी क्या है, मेरे ख्याल उसका एक लफ्ज़ है। ओ अच्छा, पर ये मंजू ठगर, ये इसके साथ कैसे जा रहा है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि जुमा मुबारक कहा है छिंदर सैमी ने भी, और साथ हैं जी

और किसने क्या कहा है, जयश्री फ्रॉम नॉर्वे, जयश्री शिकोत्रा कहते हैं आपने बात की है इंडोनेशिया के 17,000 आइलैंड्स हैं, मैं आपको बताऊं जहां हम रहते हैं नॉर्वे के साहिल पर 2,40,000 हैं, वैसे तो 3,00,000 से भी ज़्यादा हैं, पर वो आइलेट्स हैं, छोटे छोटे जजीरे, छोटे और बड़े मिलाकर 3,00,000 से ज़्यादा हैं नॉर्वे की कोस्ट पर। जयश्री बहुत अच्छे आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जैनुल मोहम्मद वेलकम। और समीन रनेजा नायर, मैंने कहा था इनकी 3 बहनें आई हुई थी भारत से यहाँ पर दौरे पर छुट्टियों के लिए, तो अब छुट्टियां आज ख़त्म हो गई हैं, बहुत अफसोस होता है लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि देव हैड अ फैंटेस्टिक स्टे हियर, रिजी रनजा और रोवीना, व्हाट अ लवली हॉलीडे इनको दिया है रनेजा नायर ने। और कहती हैं कि मैंने कहा कि ओके कोई ख़ास गाना, तो उन्होंने चुना है एक पूरे 8-9 मिनट का, पर हो सकता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए काटना, एक आधा मिनट काट भी दूँ, लेकिन ये है गाना अपनी प्यारी प्यारी अजीज बहनों रिजी रनजा और रोवीना के लिए।

0: श्योर हूँ कि अगर चारों बहनें इकट्ठी बैठकर ये गाना सुन रही हैं तो थोड़ा बहुत आंसू ज़रूर आ गए होंगे इनकी आंखों में। बहनों का प्यार ही ऐसा होता है। कृष्ण सरोय ने कॉल किया और कहा, आपको पता है द बेस्ट कॉफ़ी कहाँ से आती है? जब मैंने कहा कि इंडोनेशिया की बेहतरीन कॉफ़ीज में से, वो कहने लगे, रकून जो समझ जानवर है वो क्या करता है कि ये कॉफ़ी के जो बीज है खाता ही रहता है, उसके पेट में फर्मेंट होती है ये और फिर निकाल कर, पर दैट कुडन बी अवेलेबल कमर्शली। मुझे नहीं पता कि कैसे ये रकून के पेट से निकाल कर बेहतरीन कॉफ़ी बनती है। अच्छा
1: प्रवीण जी, आपको व बेमिसाल के सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। आपका बेमिसाल प्रोग्राम शुरू हो गया और मैं भी अपनी चाय लेकर बाहर बैठ गई हूँ इंजॉय करने आपका प्रोग्राम। और कुछ मैंने पहले भी बताया था कि कितने टाइप की चाय होती हैं और इंसान कैसे इंजॉय करता है। चाय, नींबू वाली चाय पेट घटाए, अदरक वाली चाय खराश मिटाए, मसाले वाली चाय इम्यूनिटी बढ़ाए, मलाई वाली चाय हैसियत दिखाए, सुबह की चाय ताजगी लाए, शाम की चाय थकान मिटाए, मित्रों की चाय संगत में रंगत लाए, कवियों की चाय भावनाओं में बहाए, रिश्तेदारों की चाय संबंधों में मिठास लाए। चाय चाय चाय सबके मन भाए चाय, एक चाय भूखों की भूख मिटाए, एक चाय आलस भगाए, एक चाय सम्मान भी दिलाए, एक चाय बेमिसाल प्रोग्राम की खुशियां दिलाए। चाय पिए और पिलाएं और जीवन के बेमिसाल प्रोग्राम का आनंद लीजिए। जीवन के बेमिसाल प्रोग्राम का आनंद लीजिए। थैंक यू रेखा वालिया।
0: क्या बात है रेखा, कमाल कर दिया आपने। वैसे देखा जाए तो चाय है ही ऐसी चीज, और आपने कहा है कि बता क्या बेमिसाल सुनना है ना, तो तीन चार कप तो होने ही चाहिए चाय के, प्यारी चाय। समझ, जो लोग कहते हैं ना कि मुझे चाय की आदत नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो कप जी चाहता ही है दिन में, दिन में एक तो जरूरी। नीला शेत क्या कहते हैं?
2: हेलो प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग। ये आपने जो गाना बजाया ना, सज्जन रे झूठ मत बोलो, बजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट गाना था। थैंक यू सो मच, मम्मी की याद दिला दी आपने। नीला शेठ
0: जी, नीला शेठ, या काफी माँ बाप याद आते हैं इन गानों में, बड़ी अच्छी चीज है। फिल्मी जमे हिंदी फिल्मी संगीत जो है ना, कमाल की चीज है।
3: With news from Kenya, one second you're enjoying your first day off in forever, then mid-lunch your phone buzzes, a window's been broken at home and you're miles away. In one second everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Yeah, and around the world, this is East FM News. East FM.
6: The Kenya Association of Motorists has condemned the move by EPRA to increase diesel prices by 46 shillings, terming it ridiculous. Chairperson Peter Murima says the hike will force operators to continue raising passenger fares, yet the returns remain insufficient to make profits, adding that they'll no longer allow EPRA to regulate fuel prices.
7: We fear that we have been cheated. We have been given assurances by the CS that everything is okay. We have to go back to a free market where we do not want the government to be setting this place any longer.
6: Police IG Douglas Kanja has emphasized that safeguarding democracy of the 2027 general election requires collective responsibility to counter divisive narratives in the digital era due to what he termed as increased political intolerance. Speaking earlier today at IBC security meeting, Kanja has expressed concern over misinformation and the mobilization of youth through physical and digital platforms to create disorder during the election.
8: Current political environment is characterized by heightened political activity, increasing political intolerance, weaponization of misinformation, and increased mobilization of youth through both physical and digital platforms ahead of the 2027.
6: IBC is urging Kenyans to work together towards enhancing the credibility and transparency of next year's general election process. IBC Chairperson Erastus Ethekon emphasized that the integrity of the vote is not just a commission's task, but a collective responsibility for every citizen. The government has reaffirmed its commitment to partnering with IBC to enhance security during the 2027 general election. Speaking earlier today, Interior CS Kipchumba Murkomen said the government has developed a 2027 election preparedness framework based on lessons from past elections since 1992. Residents of Loboi Centre in Baringo County are living in fear following the continued rise of water levels in Lake Bogoria, with concerns growing that the alkaline lake could soon merge with the neighbouring freshwater Lake Baringo. The alarming situation caused by heavy rains and years of steadily increasing water levels has displaced hundreds of families and threatens both livelihoods and wildlife in the region. That's the news update on East FM. I'm Suzanne Kimashia.
5: East FM. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
9: Bemisal Andaz with Parveen Atom.
0: ये बात मैं जो आपको बता रही हूँ ये पाकिस्तान की है खबर है लेकिन हम भी इससे सीख सकते हैं पाकिस्तान की सिंध की जो फूड अथॉरिटी है समझने उन्होंने क्या इंकशाफ किया है रिवील किया है कि मार्केट में जो ये ब्यूटीफुल पीले रंग की चमकदार हल्दी चमकदार शाइनी हल्दी बिक रही है ये पाकिस्तान में सूबे में बिक रही है उसमें मिलावट हो रही है हल्दी में वैसे तो हर चीज में मिलावट है समीन लेकिन मैंने सोचा कि इससे तो आपको आगाह कर दूं एक मिलावट से और वो कहते हैं कि किससे क्या मिलाया जा रहा है हल्दी में सीसा सीसे की मिलावट हो रही है सब ये जो सीसा है बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा है 71% देखा गया ये सीसा हल्दी में बच्चों की समन ग्रोथ पर ये असर करता है जो औरतें हैं दिल की और गुर्दों की बीमारी की शिकार हो सकती हैं समझे हल्दी में सीसा ये सीसा क्या है 0701106106 पे बताएं ये है क्या सीसा

0: और यहाँ है कौन, रसीला भी है. ब्यूटीफुल सॉन्ग, सो लवली, सो इमोशनल. और मुनीर ने कहा एक्ट्रेस रीमा लागू, नहीं, आज का आंसर माधुरी दीक्षित है. जबीन हैरानी, आपने दुआएं भेजी हैं, शुक्रिया. आमीन. और जो हितेन है, या शायद हितेन ही है, जिन्होंने अभी अभी कहा है कि ये जो हैं ये बर्थडे माधुरी दीक्षित की है आज. कुलवंत सर्वे इन लंदन. ओके, देखते हैं क्या कर सकते हैं. और प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग, इफ़ यू कैन प्ले दिस सॉन्ग, भाभी की चूड़ियाँ, ज्योति कलश छल के. बहुत ही खूबसूरत है ज्योति कलश, अगर आसानी से मिल जाता है. रणबीर बनावरा, ओके, ज्योति कलश, बहुत ही खूबसूरत. आई थिंक इट्स अ भजन, आई एम नॉट श्योर, लेकिन है.
1: परिन जी, आप ठीक हो? परिन जी, जुम्मा मुबारक आपको परिन जी. और कल 16 मई को मेरे अबू को 3 साल हो जाएंगे परिन जी, तो प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, मांग रही हूँ आपसे, कोई भी अच्छा अबू के नाम का कोई गाना हो तो प्लीज आप लगाना परिन जी. और परिन जी, चाय मुझे भी चाहिए होती, लेकिन सिर्फ सुबह को 1 कप और शाम को 4 बजे की 1 कप बस. अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज, प्लीज अपना ख्याल रखना.
0: शुक्रिया हुस्ना मोहम्मद, आपके जो पिता थे हमारे लिसनर भी थे, सामिन तंजानिया से वो ट्यून इन किया करते थे इनके फादर, खुदा उनको जन्नत दे. कोशिश करती हूँ कोई गाना जो मुनासिब हो. रोशन कान जी, आप इंजॉय कर रही हैं, अच्छी बात है. मैं, माई कज़न नेवर ड्रैंक इन हिज लाइफ, ही डजंट नो टिल टुडे वॉट इज द टेस्ट ऑफ टी. अच्छा, मुझे लगा कि आप कह रही हैं कि उसने कभी शराब नहीं पी, कभी चाय नहीं पी. उफ अल्लाह, दिस इज सो स्ट्रेंज. समझ, आपको कोई है जानता जिसने कभी जिंदगी में चाय ना पी हो? ये चाय का जिक्र रेखा वालिया ने शुरू किया है. वाकई इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि है कोई बंदा जिसने कभी चाय ना पी हो, उसे पता ही ना हो कि चाय का जायका क्या है. अभी चाय की इतनी प्यारी कप का कप भेजा है हमें किसने, हमारी लिसनर कामिनी ने. कामिनी पी रही हैं. और सीसा क्या है, कामिनी ने बताया है और कृष्ण सरोय ने भी बताया है. टीना ने बताया कि सीसा है क्या. दिनेश भट्ट की भी सुन लें.
2: वल्ला जी, अलैकुम सलाम. पंजाब अपना 5वां मैच भी हार गई, मुंबई ने जीत लिया. आज लखनऊ और चेन्नई का मैच है.
0: अच्छा, पंजाबी फिर हार गए हैं, तोबा तोबा, क्या करेंगे. खैर, सीसा क्या है. सुरेश पटेल, वेरी गुड जो आपने कहा है. बीना पटेल, आपने कहा माधुरी दीक्षित और दूसरा बीना, आपने करेक्ट आंसर दिया है कि सीसा है क्या. इज अ हाईली टॉक्सिक, चीप एंड एडिक्टिव सिंथेटिक स्टिम्युलेंट ड्रग. नहीं नहीं, मैंने शीशा की बात नहीं की सोनल, सो दिस इज नॉट द आंसर. भरत गंगाराम, करेक्ट आंसर लंदन से. मैंने सीसा कहा था, स स स. प्यार अली भाटिया.
3: प्रवीण जी, तो था मैना की कहानी, ये गाना फिल्म फकीरिया का है, 1976 की मूवी है, जिसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको राजेंद्र जानी ने लिखा है और इसकी धुन भी राजेंद्र जानी ने बनाई है. गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका शुक्रिया.
0: प्यार अली भाटिया और सलीम मेहर इन लंदन.
4: प्रवीण जी अस्सलाम वालेकुम, सलीम मेहर फ्रॉम लंदन. Every little smile can touch somebody's heart. No one is born happy, but all of us are born with the ability to create happiness. Prince Juma Mubarak and have a lovely day.
0: Yeah, Khuda ne kaha ki dekho main aapko zaraye deta hu lekin khushiyan apni banao. Ab main sabko to nahi khush rakh sakta. Salim Mehr, sahi aapne kaha hai. Aur Yasser, thank you for your on chai. जी, रेखा वालिया को थैंक कर रहे हैं यासर. वंडरफुल, इन एडिशन चाय in our culture joins families and starts relationships. I am referring to when a girl brings child to a rishta proposal event. ये तो ये जो लड़की को दुपट्टा पहनाकर ट्रे उसके हाथ में थमा देते हैं और पूरी तरह से उसकी उसका जेवर पहना के थोड़ा बहुत और पूरी तरह से उसको रंग रंग लगा के पेश करते हैं लड़के के सामने ये तो कोई ये तो बिलिटलिंग है रिवायत बड़ी है जो औरत के सम्मान के खिलाफ वर्जी है ये चाय को मैं नहीं मानती और हाँ और चाय ही लेकर आते हैं और कुछ नहीं वो बेचारी लड़कियां उनको नुमाइश पर रख देते हैं

0: और रसिला कहती हैं कि वो जो इंडोनेशिया के स्कूल का केयर टेकर था उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, हाँ, पर वो कितने बरस जो उसने बलात्कार किया लड़कियों का, उसकी भरपाई कैसे होगी समन? इन्होंने बताया है कि रसिलन के किस तरह से उसको उठाया गया है और कहां से। थैंक यू सना। आपने कहा है सीसा पेंट में भी इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। और समझ, सीसा पता है क्या है? आइए इनसे बात करते हैं।
1: जी, आप जो पूछ रहे हैं ना कि चाय के बारे में, मैंने सच्ची मेरी जिंदगी में कभी भी चाय का टेस्ट किया ही नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी। ये मैं एक बड़ा एग्जांपल हूँ जिसने कभी चाय टेस्ट ही नहीं की है, नीला शेठ। थैंक यू।
0: वाह वाह, क्या बात है, हमें एक शख्स मिल गया है जिसने कभी चाय नहीं पी। और कोई है कि सिर्फ नीला शेठ अकेली खड़ी रहेंगी इस मैदान में? रमेश हरिया, हमारी माता जी को 94 साल हो गए हैं, उन्होंने लाइफ में कभी चाय नहीं पी और हमने भी 27 साल तक चाय नहीं पी थी। जब ये 27 साल के हो गए तो उन्होंने कहा अब आप बड़े हैं, अब अपने फैसले कर लें, तो इन्होंने चाय पीना शुरू कर दी। रमेश हरिया, गुड वन। अच्छा, आपकी माता जी, सो 3 पीपल हियर जिन्होंने कभी चाय नहीं पी। माधुरी दीक्षित है आज 59, दीपक वडगामा और समिन, ये हैं सबको नमस्कार। और आंसर सीसे का लेड है, बिंदु ने कहा है इंडिया से, लेड है सीसा, बिल्कुल सही। सो सीसा इज लेड। रूपल, चाय पे चर्चा इज अ फीलिंग, इस इमोशन, कहते हैं घर पेग तो कोई भी लगा सकता है, 4 कप चाय की पी के दिखाओ। 4 कप चाय के पी के दिखाओ, देन सी वेयर द कॉन्वर्सेशंस गो। बहुत अच्छे रूपल। और मुनीर, अच्छा तो आप ऑन ही रखें अपने रेडियो को, हो जाता है कभी ऊपर नीचे। सीसा इज अ टॉक्सिक हैवी मेटल, वेरी ट्रू, दैट्स लेड। विद ऑल द एडिटिव्स पीपल पुट इन फूड नाउ डेज, इट्स नॉट एडवाइजेबल टू ग्राइंड योर ओन स्पाइसेस, बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स। अमीर अली राना, यही एक रह गया है जरिया कि आप अपने घर में बनाएं पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर, अजवैन का पाउडर, सभी खुद ही करते रहो। तोबा, नहीं अगर नौकर वगैरह हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना तो समिन लोग नहीं करते, लेजी रहते हैं। शबीर अहमद फ्रॉम लंदन ट्यून्ड इन एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम। और शुभ प्रभात कहा है एमएल विश्वकर्मा ने, कितने दिनों के बाद, ना जाने 3-4 तो हो गए। नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ, इफ इट इज गुड थिंग इट्स वंडरफुल, इफ इट्स बैड इट्स एक्सपीरियंस, और क्या। कहते वी आर ऑन आर हॉलीडे टूर नाउ, रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड देन टुमारो टू पुणे। पुणे रहते हैं विश्वकर्मा, बहुत खूब, आप हमें आगाह रखते हैं अपने आइटिनररी से। रोजीना मावजी, जुमा मुबारक। और वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चलता है वक्त के साथ, बिल्कुल सही। जबीन हिरानी, चेहरे की हंसी से हर गम छुपाओ, बहुत कुछ बोलो पर कुछ ना बताओ, खुद ना रूठो कभी पर सबको मनाओ। अच्छा, ये हमें क्यों इतना बड़ा भारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि खुद ना करो औरों को खुश रखो। रसिला, परवीन जी, माई मदर नेवर टेस्टेड टी इन हर 100 years ऑफ लाइफ। क्या बात है रसिला, हैट्स ऑफ टू योर मॉम।

एमएल विश्वकर्मा कहते हैं कि मैंने 14 साल की उम्र में पहली बार चाय का जायका लिया था, बाद में 3 साल के लिए मुझे छोड़नी भी पड़ी, फिर से शुरू कर दिए। चलो चाय ही है ना, मैं तो नहीं, है ना। एमएल विश्वकर्मा इंडिया से। मिसेस धंजल, आपका आपकी कॉल और जतेंद्र की मुझे साइड पे रखनी पड़ेगी, पहले हम जवाब लेते हैं मेरे सवाल का। और पहला जवाब कृष्ण सर्वे, दोनों करेक्ट। धीरूभाई लखानी, परवीन आदम जी, आई मैं ठीक हो गया हूँ। एक दिन मैं टाउन से गया था होटल, मैं बोला आ जाओ चाय बाई पीते हैं, मैंने बोला चाय दे दो बाई छोड़ दो। चाय बाई पीते हैं, क्या बात है धीरू भाई लखानी। ओके, और बीना पटेल, आपने कहा है कि एक ये हैं और औरत वैजयंती माला हैं। नहीं, वैजयंती माला नहीं है। अच्छा, फरखंदा शेख और छिंदर सैमी के कॉल्स बाद में, पहले एक जो आया है वॉइस मैसेज वो सुना दें आप।

0: प्रवीण जी।
1: प्रवीण जी मुझे 50 साल हो गए हैं, मैं रोज चाय पीता हूँ, सुबह भी और शाम को भी, और यकीन मानिए आज तक मुझे इसकी आदत नहीं पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, ये भी एक जोक था। थैंक यू प्रवीण जी, मिलता हूँ जल्द।
2: हाँ, क्योंकि सुबह भी पी ली शाम को भी, पर कहते नहीं आदत नहीं है। अच्छा अल्ताफ समेजा, ब्रिलियंट, आपने कहा है कि ये फिल्म है, उफ क्या बात है, और दोनों की आवाजें बता दी हैं। वेल डन अल्ताफ समेजा, बहुत कम मेरे ख्याल दो ही लिसनर्स हैं जिन्होंने, और आई फील द वॉइस इज दिस वन एंड बिंदु, नहीं बिंदु नहीं है, पहली आवाज आपने ठीक की है शारदा, लेकिन बिंदु नहीं है, सो बिंदु को निकालो किसी और को। और यहाँ रमेश हरिया आए हैं, दोनों नाम करेक्ट। दीपक वडगामा आपने कहा है कि ये अमिताभ बच्चन की, नहीं ये फिल्म भी वो नहीं है, सो दोनों गलत हैं दीपक। रोजीना मावजी, करेक्ट आंसर, दोनों करेक्ट, वेल डन। रसीला आपने एक ही नाम दिया है। मिस्टर एमएल विश्वकर्मा आपने कहा है कि द फीमेल इज नंदा, नहीं नंदा नहीं है, मेल इज करेक्ट। शबीर अहमद आपने कहा बिल्कुल, और राखी नहीं है, पहला नाम करेक्ट है शबीर अहमद, लेकिन राखी इज इनकरेक्ट, फीमेल इज दिस मेल। रूपल करेक्ट आंसर देने वालों में शामिल है, बहुत अच्छे, कोशिश करते जाइए।

0: और समय जो हमने वॉइस मैसेजेस रोक के रखे थे वो भी आपको सुना देते हैं. सबसे पहले जतिंदर मेरे ख्याल से आई थी.
1: हेलो अपनी जी, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक सारे. सोने सोने इन्ने गाने सोने सुनिया, चार गल चल रही. चाह तो चाहिए बंदे जरूरी है, कोई थोड़े बंदा जेड़े बंदे घट चाह पीने है, नहीं तो मोस्टली सारी वर्ल्ड के चाह तो चाह चाह चाह सारे जिथे जाओ चाह पीने. चाह पी लो चाह पी लो, कोई आंदा चाह पी लो चाह पी लो. चाह तो बगैर बंदा रह नहीं सकता. ओके कहंदे हर पल हर घड़ी हर दिन तुहानू जीन लई मिलिया. हर पल हर घड़ी हर दिन तुहानू जीन लई मिलिया है, पर तुसी हर पल हर घड़ी हर दिन मौत तो बचन दीआं कोशिशां विच गवा दिंदे हो, कोशिशां विच गवा दिंदे हो बजाए जीण दे.
0: को जीने के लिए वक्त मिला है लेकिन आप हैं कि बस मौत से बचने में गुजार रहे हैं पल पल. थैंक यू जतिंदर. और आई हैं छिंदर सैमी.
2: प्रवीण अस्सलाम वालेकुम. प्रवीण मुझे लिखा सुनील दत्त आशा पारिख हो सकते.
0: अच्छा आशा पारिख गलत है छिंदर, ट्राई करें फिर से. मैं एक और बार सुनाती हूँ लेकिन वो गलत था.
2: शेख बोझियो, पहले तो मैंने ये कहना पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो चाय के बिना रह सकते हैं. मुझे तो चाय ना मिले मैं तो इतनी एडिक्ट हो जाती हूँ, इतनी पागल हो जाती हूँ कि मुझे डेढ़ मग चाहिए सुबह चाय का, और मेरा दिन इतना अच्छा गुजरता है, फिर मुझे चार बजे चाहिए चाय. और दूसरा मैंने ये कहना था जो मैंने माँ की फरमाइश की थी, आप वो गाना लगा सकती हैं, माँ हो माँ पास बुलाती है इतना रुलाती है, ये अलका याग्निक का है, तो प्रवीण प्लीज ये लगा देना क्योंकि मदर्स डे का ये प्रोग्राम था लेकिन आप लेट आए तो मैंने कहा चलो अब मैं कह देती हूँ आपको अल्लाह हाफिज.
0: अच्छा ये गाने से हम एक्चुअली वाकिफ भी नहीं हैं, कोशिश होती है. उस दिन मैंने ढूंढा था. अच्छा अलका याग्निक की आवाज़ में है, चले कुछ ना कुछ तो करेंगे. और समीन वो जो मैंने पहले आपको सुनाया था वो ये था.
3: रवि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ और तुम्हारी तरह मेरा भी एक मिशन है. बहुत जाती ब्लड कैंसर से मेरी अपनी लड़ाई चल रही है.
4: मैं जानता हूँ अन्नू, मैं जानता हूँ कि तुम लुकीमिया पर रिसर्च कर रही हो, लेकिन ये रिसर्च तो हिंदुस्तान में भी हो सकती है.
3: क्या बात कर रहे हो तुम रवि, ये रिसर्च हिंदुस्तान में हो सकती है. इस तरह की लाभ तुम मुझे वहां दे सकोगे? रिसर्च की आसानियां तुम मुझे वहां दे सकते हो? रवि यू नो इट्स इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल यू नो.
4: तुम ये कह रही हो कि मेरे साथ हिंदुस्तान नहीं चलोगी?
0: ये जरा एक ओवर रिएक्शन भी था एक्ट्रेस का. हैं कौन एक्ट्रेस की काफी ज्यादा मिस्टेक्स हुई हैं आप लोगों ने की हैं कि एक्ट्रेस को पहचानने में. रीना आपने कहा है कि ये दो करेक्ट आंसर. रीना चंद्रिका वासंत गोसाई बहुत खूब. और रसीला आप कहती हैं कि मुझे लगता है ये बिल्कुल करेक्ट. रसीला को भी आंसर मिल गया है. अब जिस जिस को नहीं मिला वो कोशिश करें.

टीना आपने बिल्कुल करेक्ट दोनों नाम सही दिए हैं. मंजुला गोरसिया वेल डन, आपने फिल्म का नाम दे दिया है. ओके मिसेस पटेल कहती हैं अभी एक मधुमति का गाना है तो दूसरा भी तो सुना दें टूटे हुए ख्वाबों ने. ओके ठीक है मिसेस पटेल आपकी फरमाइश आगे. और सोनल फिल्म का नाम बिल्कुल सही, फिल्म का यही नाम है और आपने सही जवाब भी दे दिए. फिल्म का नाम है दर्द का रिश्ता. और ये दो आवाज़ें जो आपने पहचानी है ना वो एक स्मिता पाटिल की है और दूसरी सुनील दत्त की है. तो पहले एक फरमाइश पूरी करते हैं फिर मैं आपको दूसरा भी क्लिप सुनाऊंगी.

0: और कहा है मिसेस पटेल ने, मैं तो शांत रह के आपके गाने सुनती हूँ, तभी मज़ा आता है ना। आपने हेमंत के आप गाने बता रही थी जो आपने एंजॉय किए। अच्छा, मिसेस पटेल के बाद आती हैं खतीजा, और खतीजा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और यहाँ पर किसी और ने मुझे ज़रा गलत भी दिया है, खतीजा करेक्ट है, और साथ में जी रीना रॉय नहीं है, अमीर अली राना, रीना रॉय इज नॉट हर। और रमेश हरिया आपने कहा है ये जो मूवी है नागर ये याद में बनाई थी, नरगिस की याद में बनाई थी ये फिल्म सुनील दत्त ने, बिल्कुल सही कहा है आपने रमेश हरिया, कैंसर के मरीजों के इलाज पर बनी थी, बिल्कुल। तो समीन ये तो हो गया था ना एक क्लिप, तो जो दूसरा भी क्लिप है ना वो भी आपको सुना दूं क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। दूसरा क्लिप ये था।
1: बेटा वो तो कहता है असल चीज है उम्मीद, लेकिन उम्मीद का ये मतलब तो नहीं कि आज तो भी रात को देख कर तुम आंखें बंद कर ले और ये समझ ले कि रात कभी आने वाले नहीं। वो तो दिलासा दे रहे हैं, वो मेरी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे।
2: वो तो वैसे ही है, आज कह रहे थे डॉक्टर साहब से कहना दर्द बर्दाश्त नहीं होता।
0: समन मैंने दो क्लिप्स एक में डाल दिए हैं इस गुफ्तगु में, पहले ने जो कहा है उसका लड़की की आवाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दो डिफरेंट आजाद क्लिप्स हैं, ठीक है। आपको दोनों के नाम बताने हैं, पहले एक एक्टर बोलता है फिर एक्ट्रेस बोलती है, फिर से मैं आपको सुना दूं।
1: वो तो कहता है असल चीज है उम्मीद, लेकिन उम्मीद का ये मतलब तो नहीं कि आज तो ही रात को देख कर तुम आंखें बंद कर ले और ये समझ ले कि रात कभी आने वाले नहीं। वो तो दिलासा दे रहे हैं, वो मेरी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे।
2: वो तो वैसे ही है, आज कह रहे थे डॉक्टर साहब से कहना दर्द बर्दाश्त नहीं होता।
0: अच्छा, ये कौन है दोनों? ऑफ कोर्स दो कॉन्वर्सेशन से मैंने ये लिए हैं, दो क्लिप्स एक में डाल दिए, दोनों की आवाज पहचानी है?

0: पहले पहल जिन्होंने मुझे सही जवाब दिया कृष्ण सरोए, साथ ही रसिला शाह, रमेश हरिया, सोनल मोदा, अमीर अली राणा, मंजुला गोरसिया सही सही सही जवाब लेकर आए हैं। जग्गू आपका भी बिल्कुल सही आंसर है, नीला शेत करेक्ट आंसर, आपने फिल्म का नाम भी बता दिया है। और फरखंदा शेख क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं।
1: क्या कौन सा नाश्ता कर कर आई हो, इतने खूबसूरत सुबह के गाने लगा रही हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आप ऐसे ही हमें सुनाती रहे, हमारा दिल बहता रहे आपके साथ, अल्लाह हाफिज।
0: क्या बात है फरखंदा, सिर्फ वो माँ का गाना बदल दें ताकि मैं कोई और अपनी पसंद का, माँ का उस दिन भी मैंने सुनाया था अपनी पसंद का। सो जबीन हिरानी आपने कहा आई थिंक वन इज दिस और दूसरे साधना, दर्द का रिश्ता फिल्म है, साधना इसमें नहीं थी। ठीक है, बाकी जिन जिन ने मुझे आंसर दिया है करेक्ट, वेल डन, पर कोशिश करें।

0: और दीपक वटगामा आपने कहा है कि ये सुनील दत्त हैं नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल वो सुनील दत्त नहीं है पहले क्लिप में थे सुनील दत्त और स्मिता पाटिल लेकिन नॉट इन द सेकंड वन सेकंड में बिल्कुल मुख्तलिफ आवाजें हैं और टीना आपने कहा है कि ये हैं सुनील दत्त और दूसरा फीमेल करेक्ट है लेकिन ये सुनील दत्त की आवाज नहीं है किसी और की है जो बहुत बड़े मंजे हुए अदाकार थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के और वो बड़े फादर के वे भी किरदार में बेहद कामयाब रहे फादर
1: बेटा वो तो कहता है असल चीज है उम्मीद लेकिन उम्मीद का ये मतलब तो नहीं कि आज तो ही रात को देखकर तू आंखें बंद कर ले और ये समझ ले कि रात कभी आने वाले नहीं वो तो दिलासा दे रहे हैं वो मेरी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे
2: वो तो वैसे ही है आज कह रहे थे डॉक्टर साहब से कहना दर्द बर्दाश्त नहीं होता
0: जी ये अब दोनों मुख्तलिफ डिफरेंट आवाजें हैं बिल्कुल ये सुनील दत्त नहीं है और ये स्मिता पाटिल नहीं है

0: समय कितनी मेहनत की होगी, प्रोड्यूसर क्या, डायरेक्टर क्या, म्यूजिक डायरेक्टर। ओके, अब यहाँ पर आते हैं दीपक वडगामा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब जबीन हिरानी, आपने कहा है कि क्या ये हैं फीमेल, करेक्ट। अब आपने गेस करना है वो मेल कौन है। पहले तो वो हीरो की सूरत में आया करते थे, बाद में कैरेक्टर एक्टिंग में उन्होंने जोर दिया और कमाल के रोल्स किए, ग्रैंडफादर हुआ, ससुर हुए, पिता हुए, उनके रोल्स में वो है मेल।
1: East East FM, Kenya's premier Asian mix. The Grammy Award winner, the film soundtrack genius, the jazz maestro, the man behind your all-time favorite hit.
2: Kenya, 31st May at Sarit Expo Hall. I'm coming to serenade you with many more.
1: Kirk Whalum is coming to 2026 most awaited one-night only experience. Sunday, 31st May at Sarit Expo Hall.
2: I'll be performing all the Grammy Award-winning songs just for you.
1: One night only. An exquisite night of culture, Afropop, jazz and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob.
2: It's going to be a night to remember. You got to get your tickets, Kenya. See you soon.
1: Sunday, 31st May. Grab yours now at ticketyetu.com.

0: that rumbles all the earth continues as 10 world giants of crickets face each other to see who will rule.
1: It's the IPL 2026.
0: And this year, it's legendary, as all grueling matches are full of thrills and nail-biting excitement.
1: Get ready to cheer on your team as we here at East FM with Duracoat keep you updated on every moment. IPL 2026 is on. Catch all updates on East FM with Duracoat. Ask the experts.
2: With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
3: East FM पर बुध की खबरें दिन के दो बजे. पहले खबरों की सुर्खियां. साबिक डेप्यूटी प्रेसिडेंट के मुकदमे की समाअत जारी. पैन अफ्रीकन मीडिया समिट शुरू. तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री का पहला हुक्म और सदर ट्रंप चाइना के दौरे पर. खबरें तफसील से. नायब सदर डेप्यूटी प्रेसिडेंट रिगाथी गशागवा के मुकदमे की समाअत में आज उनके डॉक्टर डैन गिकोयो ने गवाही दी और कहा कि जब इंपीचमेंट के दौरान गशागवा की तबीयत बिगड़ गई तो सदर रूटो ने उनकी हालत पर कॉल किया था. डेप्यूटी प्रेसिडेंट को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा. आईसीटी के मुशीर विल्सन काबोगो ने कहा है कि चुनाव से पहले 2027 इलेक्शन के दौरान इंटरनेट सुविधा मुयस्सर की जाएगी मगर सारफीन को हदें पार करने नहीं दी जाएंगी. ऑनलाइन जिम्मेदारी निभाएं. पैन अफ्रीकन मीडिया समिट सफारी पार्क होटल में आज शुरू हुई है. अफ्रीका के मीडिया के भविष्य पर अहम फैसले लिए जाएंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म शिफ्ट्स पे बात होगी. आलमी खबरें. तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने राज्य के 717 शराब खाने बंद कर दिए हैं जो सरकार की मार्केटिंग कॉरपोरेशन चलाती है. ये लिकर शॉप्स मंदिरों स्कूलों और बसों के अड्डों के नज़दीक हैं. टैसमैक एजेंसी की कुल 4,800 दुकानें हैं जिनका कारोबार 48,000 करोड़ रुपी सालाना है. सदर ट्रंप 10 वर्षों में पहले अमरीकी प्रेसिडेंट बन गए हैं चाइना के दौरे पर जाने वाले. दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के दरमियान मुलाकात अहम मानी जाती है. अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ बोइंग सिटी ग्रुप और क्वालकॉम के एग्जीक्यूटिव्स को साथ ले गए हैं. तिजारती तालमेल बढ़ता है या कम होता है वॉशिंगटन और बीजिंग के दरमियान 15 मई के बाद वाज़ेह होगा. ब्रिटिश कैबिनेट के 4 वुजरा यानी मंत्रियों ने इस्तीफा देकर मांग की है कि प्रधान कीर स्टार्मर अपने ओहदे से हट जाएं. लेबर के 80 सदस्यों ने भी यही कहा है. स्वास्थ्य मंत्री जुबैर अहमद भी हुकूमत से अलग हो गए हैं और प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की मांग की है कि ब्रिटिश अवाम का साथ खो चुके हैं स्टार्मर मगर स्टार्मर ने हटने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जहां कैद हैं अडियाला जेल के अतराफ की सड़कों को कल बंद कर दिया गया. गैर ऐलानिया तौर पर दफा 144 लागू कर दी गई. हुक्म को नज़रअंदाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ये कहा गया. धमकी दी गई. अडियाला जेल के इलाके को रेड जोन करार दिया गया. ये थी आज की खबरें. मैं हूँ परवीन आदम.
0: Another hour of more fun and great music. Afternoon Affair with Nimrod Kaur.
4: 3 minutes past two. It's a Friday, no sad music, but we're still keeping it chill before we pick up the face. I do have Shahid Malia lined up for you, Karan Aujla, Arijit Singh as well. But to get us started, Darshan Ravel is here with Hawa Banke. It is 3 minutes past two. And hey, if you made it this far through the week, this is for you. You deserve it.

0: Like me. Allah Duhai, playing for East FM, Kenya's premier Asian mix. This is The Rush with Vishal, and hum baat karenge aaj about lyrics that we misunderstood for years. So you know that painful moment when you confidently sing a lyric for years, and that one day you discover that you've been disrespecting the artist the whole time. Some of us grew up singing absolutely words that made no sense, so, and we all did not have any shame, full confidence, full in, we did it at weddings, buses, school trips, everywhere. So बहुत सारी ऐसी लिरिक्स होते हैं जब जो मिसअंडरस्टूड होते हैं, और समटाइम्स यू इवन मिसप्रोनाउंस फ्यू लिरिक्स. सो द स्केरी थिंग इज वंस यू हियर द रॉन्ग लिरिक, योर ब्रेन रिफ्यूजेस टू अपडेट द सॉफ्टवेयर. हैज दिस एवर हैपेंड टू यू?
1: दिस इज ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स.

0: From the hoods to the easy cruise. East FM traffic update.
1: Let's check out what's happening on the roads of Nairobi. बहुत सारा जाम मेरे को दिख रहा है अभी and we'll start with the Langata Road. That is looking very busy as well. And we've got Popo Road connecting towards Mombasa Road. That's moving slowly. Lusaka Road is moving slowly as well. We've got some traffic along Bagathi Way as well. And Gong Road is moving slowly and so is... ये कौन सा वाला है येस गिटांगा रोड मूविंग वेरी स्लोली एज वेल एंड लॉट ऑफ ट्रैफिक अराउंड लेनाना रोड उधर साइड भी बहुत सारा ट्रैफिक है कमिंग टूवर्ड्स पार्कलैंड एरिया थोड़ा सा ट्रैफिक है उधर किपांडे रोड सम ट्रैफिक अलॉन्ग दैट साइड एंड ग्लोब राउंड अबाउट मूविंग स्लोली एंड पार्कलैंड रोड पे थोड़ा सा ट्रैफिक है आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज सो सम ट्रैफिक अलॉन्ग दैट साइड ओजीजो रोड सम ट्रैफिक देयर एज वेल एंड वी हैव गॉट ट्रैफिक अलॉन्ग मसारी रोड एज वेल पाकर रोड इज मूविंग स्लोली एंड लिमुरा रोड कनेक्टिंग टूवर्ड सिक्स पार्कलैंड इज ऑल्सो मूविंग वेरी स्लोली जूजा रोड ट्रैफिक हैज स्टार्टेड बिल्डिंग अप ऑन दैट साइड एज वेल सो इन केस यू सी एनीथिंग अनयूजुअल ऑन द रोड और हैव समथिंग टू रिपोर्ट यू कैन शेयर दैट विद मी ऑन 0701 106 106

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा